मैं गम कर मैं परेशान जी ऐसे से बोले मुरुकु नो मान अब मां कुलो ना मागी मागी बाबा मां यू रीड एज ए वे वे ओयो